0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
1: Nabi Sardar Zaman. मैं हूँ असमा नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और चमक

చిమినాలం చికిత్స లైవ్ దాయం ప్రాడ్ కావాలి సార్ నంబర్ సార్ నోట్ కి చిమినాలు బిల్కుల్ పది నెంబర్ మన కాల్ కావాలి సార్ కిస్మాలు మాధుల కావాలి 0335 20 20 20 4 0335 20 20 2 4 0 3 3 5 2 0 2 0 2 0 4 जिमिनल जी जमा सर पर ग्राम की बजे फोन पर कैसे वक्त लगाओ इंतिया शुक्रिया अदा कम जिमिनल के चाम निकाल कर कोशिश करो यो काली नहीं लगे दिला अगवान अगवान स्पेशल बखना चखफाने शुक्र बाई जिमिनल पर ग्राम दौरान कमा दा खुले ना सबीर बाई दा खुले ना समील बाई दा खुले ना या कलरान साहिबान दा खुले ना चे ददे सी अल्फाज अदा शिव चा स्टाफ सुमान करी बदा बन खरी लगे दिला बाकी मन हम दन स्पेशल बखना समरम साइलेंट वायलेट लिस्ट दा बटोले ता दा जरे दा तन सलाम सलाम सलाम ना جیمنال کتا تو خخی گئی اخبار زویر اور ارجن اب جان متر یاران دوستان تو ور کی جزا تدید واسرا چتا اسے خوشحال اسے بعد اسے شپا مو بخیر کبھی وفا جن وفا کا بل پروگرام کی بکی کی ملاقات رکھے ٹائم پر ٹاٹا بھائی بھائی پاک رب تم اس پار اللہ پامان پاکستان زندہ باد ایم کے کاسمان ایکس پاکستان پائیں دا بعد او کے اللہ

0: Radio Ama Network News and Information Station.
1: जाने तमन्ना जाने अदा
2: जहां मिले आपको तफरी
3: जहां मिले आपको मालूमात
2: और जहां गूंजे सिर्फ आपकी आवाज दिन हो या रात
3: रेडियो मन 88.4 करक हमेशा आपके साथ
2: रेडियो मन 88.4 करक अपनी आवाज अपनी पहचान
4: या रात खुशी हो या तन्हाई हर वक्त एक आवाज साथ हो रेडियो अमन 88.4 कारक आपके हर

0: आपकी पसंद, आपके एहसास और आपके लम्हों की खूबसूरती, सब कुछ एक ही जगह, जहां हर प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए। रेडियो अमन 88.4 करक, आपकी अपनी आवाज।
1: दरमान होम्योपैथिक सेंटर करक, होम्योपैथिक की दुनिया का एक बेहतरीन इदारा, जहां पर होम्योफिजिशियन डॉक्टर मुस्तफा कमाल साहब सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अपने मरीजों का इलाज इंतहाई महारत और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मुनासिब कीमत पर करते हैं। अगर आपको किसी किस्म की बीमारी का सामना है, मसलन जोड़ों का दर्द, गुर्दों का दर्द, आसाबी दर्द और कुनिसा, ब्लड प्रेशर, शुगर, हेपेटाइटिस ए बी सी, बेइलाजी का मुस्तकिल इलाज, मैदे का इलाज, मिर्गी, बवासीर, खूनी दाना, गुर्दों की पथरी और पित्ती की पथरी के बगैर ऑपरेशन इलाज के लिए तशरीफ लाएं। दरमान होम्योपैथिक सेंटर, खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी करक के नजदीक हीरो जनरल स्टोर के बिल्कुल सामने। दरमान होम्योपैथिक सेंटर करक, अभी राबिता करें। राबिता नंबर 0331 12 12 413।

0: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
1: कल की यादें आज के लम्हे और आने वाले कल की उम्मीद सबको जोड़ती एक आवाज रेडियो अमन 88.4 तरफ हर वक्त आपके साथ।
2: दिन हो या रात, खुशी हो या तन्हाई, हर वक्त एक आवाज साथ हो रेडियो अमन।

हाँ जी सही कॉल से मिलेगी प्रोग्राम से आप 0927291292 बने ठीक सो दी नंबर बने कॉल से मिलेगी।

0: अच्छा जी बिल्कुल मैसेज करे दई छ मैसेज करे दबा त होय नस्ता अविश दा गुल लता स्पेशल डालाई
1: जी
0: मन दो वेची जमा खो जानी जमा रे जानाना जमा खो जानी जमा रे जानाना तने कुर्बान जमा बाणा जानाना सदा खैस नगमे हर लोरी गगीगी तय संदरा हम टपा जानाना
1: डेर शान डेर
0: शान ओ स्तरग में गाड़ीस्ता विशाल बारान
1: देर
0: शान स्तरग में गाड़ीस्ता विशाल बारान राशपो राशपो माशा मेहरुबान जानाना
1: देर शान
0: ओ माय गॉड जबरदस्त।